पर सड़ जाएगा। ए भाई मैं पिंकी में हूँ कि वो एक्चुअली आ रही सपना इधर देखो। हाँ सपना इधर अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है।

0: Do a bye too.
1: Okay, I know, brother, I know. Thank you. Okay, Sonia. Bye. मैं जरा शराब निकाल के आता हूँ.

पानी परियां मुस्कुराए, देखो बगोरी करी राए, हमको इशारों से बुलाए।